0: सारे शराबी। क्या हो राजा?
1: गली में आ जा।
2: होली होली
3: भांग की गोली और नखरे वाली
0: दूंगी मैं गाली।

0: This is Sunrise Retro.
1: मुझे मत दुआ दे कि मैं बद्दुआ.
0: This is Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix.
2: ये है Sunrise Retro.

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते, मगर मगर

शहर, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप खोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिंस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: Mid mornings with Sunrise Retro.
1: तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले जब दिल मिले तब गुल खिले जब दिल खिले तब दिल मिले मिले मिले मिले मिले दिल मिले

0: कोई मॉडल पूरा न लगता है।
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी।
2: This is Sunrise Retro.
3: At TUI, we give you more. More confidence you got the best deal thanks to the TUI Price Match Promise. More hotels designed around what you love, from swim-up suites to splash parks. And more ease with flights, transfers and hotels all in one place. Package holidays made simple. Book on app, in-store or online. TUI. Atoll and APTA protected. T's and C's apply. Selected hotels only. See website for details.
4: Transforming your home is as easy as Dunelm. Thanks to Dunelm's summer savings, there's up to 50% off selected pieces, from furniture and mattresses to rugs, decorating and more. But hurry, must end Bank Holiday Monday. Save in-store, online, on the app and with free click and collect at Dunelm.
5: The home of homes.
6: London ka retro Asian mix. Sunrise Retro ko sunne ke liye shukriya. हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेडियो को सुनना मत भूलिएगा ऑन 963 एंड 972 AM इन लंदन, नेशन वाइड ऑन DAB, दुनिया भर में वाया sunriseradio.com, फ्री सनराइज रेडियो ऐप पर या फिर अपने होम स्मार्ट स्पीकर्स या रेडियो प्लेयर एंड नेशन प्लेयर ऐप पर। सनराइज रेट्रो, लंदन्स रेट्रो एशियन मिक्स।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: back-to-back songs with the Sunrise Radio app. Download now for free for Apple and Android devices.
1: सुनो सुनो अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो अरे मदन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओए जरनल सिंह अरे तुझी भी सुनो पापे।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से।

और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो,
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो,
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए
1: हो जाए।